विचार अपना जान मुझे प्रत परी है जुन जुन सतरे हमारी मरी है देख तेग जग में दो चल राखिया मोय और न दल तुम मम करु सदा प्रत पार तुम साय मैं दास तिहार जाने अपना मुझे निवाज आप करु हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा।

जब आयस प्रभु को भयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप दे सबू कह सुनाए कवे वाच दोहरा।

चौपाई जो ये कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ये फल होई आद व्याश्व सके न कोई।

संत का संकट उपाय की पाई गया, संत की सेवा नाम तिगाई गया, नाम तुर का शरण हो गया, नानक गुरु नाम पाया गया, गण को श्लोक बस शास्त्र बस मूर्ति पेखे सर बट डोर पूज संराही हर हरे नानक नाम अमर हरि जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वकियान योग अभ्यास कर्म त्राम क्रिया शक्ति अवकर्मति फिर अनेक प्रकार की भजन न पंदन होमे भारत न शरीर कटाय होमा कर राति व्रत नियम कर बहु पाति न तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपी एक बार नाव कांड प्रथमी फिराय चर जीव महादास तुपि सरथ युवा गण माहि होम प्राण कनका सब है वर भूमदान नियावली कर्म करय बहवासन जैन वर्ग संजमत साधन निम निम कार श्री कटाता पी होम वैण जब हरक नाम सम सरकश नाही नानक गुरमुख नाम जबत गात पाही मन कामना दियत देह छोटाय गर्व मन मंद छोटाय सूझ करय दिन सर गात मन की वैण न तंत जात देही कहो बह साधन

ग्रंथ जामी अपने गातम यत जान आप आपन संगा प्रवृत्ति तम रिवस्तत तम देह नयन को अवरण जान सुख सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सकल क्रिया महोत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल क्रिया सकल उत्तम उत्तम पर हर का नाम जप हो जिया सदा सकल बानी अमृत बानी हर को जा।

दूर पुरा न छोड़ जाय तस राम पर संग सहाय दह पर हरा चंद्र प्यो तारा तुय कर तव प्रीत पसम संग होय अंत को मह पत तब विकरा नान कर लिखु प्रभु दयाल कर तू तो पशु कुमार से जात लोक चारा करा दिन रात बाहर पीख अंतर मर माया शब्द नाह काश कर छुपाय बाहर ज्ञान ते अन सनार अंतर व्याप रूप स्वान अंतर अगन बहर तन सो अह कर पाथर कैसे तरा था जग अंतर बस प्रभाव नान तीय जन सहज सुमाय तो सोना अंधा कह मार्ग पाव कर कह लिखु उड़ने बहावे

ताय वेरथि साकृद्विहार्जा साजवेनाकः वतसुचाय वर्तनावनतनान्तमुखावताकतुरगन्धबिनसिमरनर्तनरायनुम्रथाभ्यहं विग्वनजुक्तिजाय।

प्रभु जे जे प्रसाद उपाय तो लाभ दे नाम तक भगत करी जे प्रसाद आप भूखन पहरी जा

सुभ्रमृह सदानु जिह प्रसादिर्निजात सुभ्रमृह सदातन राज प्रसादिपात्र गुरु प्रसाद नानक जास कह जय प्रसाद सुन कर्णनाद जय प्रसाद पीख विस्मा जय प्रसाद बुल अमृत रसना जय प्रसाद सुसज वसना जय प्रसाद हस्त कर चरण जय प्रसाद संपूर्ण कर जय प्रसाद परम गत पाव जय प्रसाद सुख सहज समाय सब्र।

साधुक संकाय कुलाय अनुसार संगमृत गुण गाय अनुसार साधुक संग सर्वथान गमन अनुसार साधुक संग सबर जनाब साधुक संग रहिकाश काल दर्शन पीर धोतन हार साधुक संग कलूह तर साधुक संग नरक

चंद ब्रह्म ज्ञान का निर्मल मंद ब्रह्म ज्ञानी जो सकार है प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ पागी पाई है ब्रह्म ज्ञान का बैल बैल जाइए ब्रह्म ज्ञान का खोज हम सरनायन ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञान का सकल मन वाह ब्रह्म ज्ञान का काम जाना पेद ब्रह्म ज्ञान को सदा दिवस ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जयादा केयर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मृत कौन बखान है ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञानी जाना ब्रह्म ज्ञान का अंतरा पैर नान ब्रह्म ज्ञान को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सर्व श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञान साथ जीवन मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण

भगवंत की टहल कराय नियतन मानता नुपाय बिशन प्रीत हर चन हृदय सब नन कह भगवती भगवंत कौ पाव सुपंडित जो मन प्रबुद राम नवात्म सुध राम नमसार रस पीव सुपंडित का उपदेश जाग जीव हर की कथा हृदय सब सुपंडित फिर जो नावित पुराण स्मृत पूजा मूल सुख मह जान सथूल जहाँ वर्ण कुदी उपदेश नैन सुपंडित कौ सदा दी सब बीज

क्रिया दुर्कर्म जस गय मन पार ब्रह्म कर्ण वैस्तु के नाम सत राम दास सतम राम दहन त्रिया दास दसान तरण पाय तिन पाय सदा निकट निकट हर जान सोदा दर्ग प्रवान।

उतार दीप से सनान कभु से साधु ज्ञान कभु कीटहस्त पतंगु हे ज्ञान जन परमा परमिया नाना रूप जो सुभागी दिखा जो प्राप्त पावत वन जा जो पावे सोई हुए नान गुजा वन कोई कभु सा संगति हो पावे उस स्थान ते बहन आवे अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस स्थान कहीं बिना सुमन तन व्रति करंग सदा बस पार ब्रह्म के संग जीव जाल मह जाला इकटन तुम ज्योति संग जो समान मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु के साधु कुरबान सर्वोक सुखी वासा मसगिन यामनवार तली बड़ी बड़ी अहंकार या नानक गर्भ गले अस्पति जिसका अंतर राज अपमान सो नर्क पाती हो बत स्वयं जो जाना में जो बंद हो बत बिष्टा का जनता उसका कर्म अंत कहे वह जन्म मरे वह जो अनुक्रम तन कुम का जो कर गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान।

सतनाम बेटा को ना अनजाना सच्चा सुख सब काट दस जोह करने और सदा सदा दस का नाम सकार प्राप की उस्तत करहु संत मीत प्राप की उस्तत करहु दिन रात तो सह तिया वह सास करा सब कछ वरता दस का किया जैसा करता है पुथ किया अपना खिलाव करने और दूसर कौन का है विचार जिसनु कृपा कर दस आप नाम दीवड़ पागी ना अनजान से श्लोक ताजहु से अनुसर जाना सिमरहु हर हर आई ई का सहार मन रखो नानक दूह परम पाओ जय अष्टपदी।

मन सदा सदार गुण गाहि। राम नाम जो करह विचारु से तनवंत कर संसार मंत अनुख बोले हर मुहि सदा सदा जानहु ते सुहिए कुए कै छानय तो सोजी जान नाम संग जह मन मान।

नानक चौथे पाद में सो जन्मत पाई। रूप सात जा का सात स्थान प्रसाद केवल प्रदान कर तू सात सात जा को वर्ण सात पुरुषम समान सात कर्म जा की रचना सात मूल सात सात उत्पाद सात कारण निरंबर निर्मली जैसे हो जाय तसा सा फली सात नाम प्राप्त सुरता विश्वास।

गायत जिसकी श्रेष्ठ सो कारण है। रवन कुछ करत विचार कर दे कि मैं इतना जाने कि अनन जोत पावे सो वर दिया बिस्मन बिस्म पय बिस्मा जन पूजयात है स्वाद प्रभु करंग राज जान रहे गुरु का वचन पदार्थ रहे ओए दाति तो काट नार जा का संग तारा संसार जन का सब सो बड़ पाग जन का संग एक लेवे लाग गुण गोविंद कीर्तन जन गाय गुरु प्रसाद नान फल पावे स्वरूप का तो सच जुगा तो सच है प्रिय सज नान गोसी प्रिय सज अष्टपदी चरण सातु सत प्रसनार पूजा सातु सत शिव दार दर्शन सातु सत पिखनार नाम सातु सत यावन हारव सातु सत सतारी अपि गुण अपि गुण कार्य सब सात सत प्रभु भक्ता सुरत सातु सात जय सुनत भजन हर को सात सब हे नानक सात सात प्रभु सोई सात स्वरूप पर दाय जन मान्य कर्म करंत मूल पुछान जा कर दाय विश्वास प्रभाय तात ज्ञान मन प्रगटाय पै तिय निरुपाय हुए पुसान जहति उपजयाद मैं मन बस्त महल बस्त गटाय ताको पियन न कहना जाई।

सेवक जान संग प्रभु का सेव नाम करांग सेवका उपरा पालन नर सेवक विराकन रंकार सो सेवक जख दया प्रभु तार नान सो सेव सा सुमार अपने जन का परता टाक अपने सेवक सर पर राख अपने दास दी बढ़ाई अपने सेवक नाम जपाई अपने सेवक आप पात राख ताकि आत्मा तो न राख प्रभु सेवक

सुखी सावरना दृष्टाया नाम तान नाम रूप रंग नाम सुख नाम कसंग नाम राह जो जान तृपता निमान तान नाम है नाम समान उठत बैठ सुबत नाम कह नान जन का सदकाम बोला हो जाह जिह वह दिन रात प्रभु अपना जान की निदात कर भक्त आत्म के जाय प्रभु अपने सुन रह समय जो हुआ हुआ तो सो जान प्रभु अपने का गुण पछान तो कि मैं मकान बकान और तो का गुण कही न जान आठ पहर प्रभु सह जुद कह नान से जान पूरे मन वीर दिन की ओट दीह मान तन अपना दिन जान दीह जिन जान अपना प्रभु पुछा दस वो जान सर्व थो का दाता इसकी शरण सर सुख पाए वह तिसका दर्श सब पाए मिटाए वह और श्यान सकरी शाट दे जन की तुसी बला गावन जान न हुई तेरा नान के जन के पूजा हो साध पैरा सलोक साध पुरुष जन जाने आ साधु दुख का नाव दुख का संग से कोतराए नान कह गुण गाव अष्टपति साधु गुरु से की कर प्रत बार शिव को गुरु सदा दयाल से की गुरु दुर्मत माले फेरा गुरु भजनी हर नाम मुद्रा साधु से के बंद

कीमत के नैना पायन भगत बंधन निजत कर है कर्म कमन हृदय सिमर है सतगुर हरि सतगुर अपने नैन जह प्रसाद है सब प्रभु जपनी हुहार रास पावे जन को अमृत पीवे अमृत सोहे उस पर कह नाहि कदि मिलह जा कमन प्रगट गुणता साठ पैर का नाम दिय सहज दिए सह शिव कर दिए मोह माया कथन न लिय मन महरा कह हर हरि कंत कर दीपक प्रकाश नैन परम मोह दुख तह दिन असित बद मह ठांड वरत अंत पै दुख नाठि पाए जन्म वरन के मिटे आंदी से साधु को पूर्ण उपदेश से

पुष्टावह सुत अनहर्षिवत उपावह जस शोक कारण तब्बान छो सुख साधु संग प्रियता जय सोभा का करह परिकर्ण सा शोभा पद हर्ष सरणि।

सेवा त्याग सर्व करती एवं रत्न जन कहु उदार हर हर सिमर प्राण आधार इनके पवन छुटन हारि समृत सा सत वेद विचारि हर की भगत कर हम लाय मन पंचत नान फल पाय संग न चार तेरा तना तुम क्या लपटावे मूर्ख मरा सत वेद कुटाम बार बंतायंती कहु तुम कम सुनाथ राज रंग माया विस्तारयंती कहु कम छुटकार निर्मल तुम्हारे चरण कमल रा।

वेदांत बताने पूर्ण पुरख नहीं बुलाने शुभ्र परि प्रेम रस रंग उपजा चाव साधक संग परे सरना सब त्याग अंतर प्रकाश आन दिन लेवला गुरु पाग जपया प्राव सोय नानक नाम रति सुख होय सेवक मनसा पूरी पई साधु कर दिन दर मन बात रही जान को प्राव हुई उदय आ शिव की नसद न हाल बंधन काट मुख जान पाया जन बर दुख राम गया इस पुण्य सारदा सा पूरी राव रहे साध संग गुरु जिसका साथ लिया मिलाय नानक भक्ति नाम समाये सो क्यों बिसरा जी का न पाना सो क्यों बिसरा जी किया जाना सो क्यों बिसरा जन साहब किश दिया सो क्यों बिसरा जी जीवन जिया सो क्यों बिसरा जी अगन महाराज का गुरु प्रसाद को बिरला राख सो क्यों बिसरा जी बिकती काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गौर पूरा ताते है बुझाया प्रभु अपना नाम जानते है साज हंद करो ये हुका मानते है जब हर नाम सिमर सिमर सिमर से कुपाव आप जब आप रह नाम जो पाव हो भगत पायो दरगा संसार बिन भक्ति तन हो सी शायद सर्व कल्याण सुख निर्दना उड़ जग पाए बिश्राम सब दुख अवतना स्नानक नाम जप गुणता उपजी प्रीत प्रेम रह चाहु मन तन अंतर ही सवाऊ नियत्र बिह दरस सुख हो मन बिग सा साधु चरण तो भक्त जनक मन तन रंग बिरला को पाव संगी वस्ती जा करमया गुरु प्रसाद नाम जब लया ताकि उपमा कही न जाय नान करहि आ सर्व समय प्रभु संग दीन दयाल भगत वशत सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रत पारात पुर कारण करतार भगजन प्राण आधार जो जो जप सो हो पुनीत भगत पाए लाभ मन हित हम निर्गुण यार निज अजा नाम कुमर सन पुर भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोक पाई निम हर के गुण गाय अनक राज भोग बढ़ी आई हर के नाम कथा मन पाई व भोजन का प्रसंगीत रसना जाप दी हर हर नीत पली सो करण सुभा तनवंत हृदय बस पूर्ण गुरमंत शासन प्राप्ति हूँ निवाय सर्व सुखनान प्रकाश लोक सरगुण निर्गुण रंकार सुन समाधि आप आपन किया नान कया भी फिर जाय बृहस्पति जब अकारि काश नान दृष्टि तप अपन ताप कह दू तब तारी अपन सन संवाद ताप बैर विरोध केस संकुमात जब इसका वरण चिहन न जाप तब हर शोक कहु के सव्याप जब अपन आप अपार प्रणता मोह कह कहोत परमापन फिरावर्ती जा नान करने आनंद उजा जहोत

उपायापन प्राणलय समाय तुम दिव्यन नहीं किशोयापन सूत सब जगत प्रयोजाक प्रभु जीवा जय सचना सोय जन पाय सुब सम दरसी तत् कवित नानक सब श्रेष्ठ का जीता जी जंत्र सवता कह दीन दयाल अनाथ पनाथ

पूरहृदयाल सब प्रवत कृपाल अपने कर्तव्य जान आप अंतर जम रहे व्या प्रत पाल जीवन बह पात जो जो रचियो सुत सहत याद जह पावत हलय मलाय भक्त कर अर्पि गुण गाय मान अंतर विश्वास कर मान कर नानक जाने जान लागा हरि का नाय दुखिया न व्यर्थ जय सेवक सेवा बनाय कुंभूज परम पद पाए ते ऊपर नहीं विचार जा कमन बस अंतरंकार बंधन दौर पै निर्वय नंदन पूजा गुर के पैर यह लोक सुखी है परलोक सुखी दे नानक हर प्रभ आप मेरे साथ संग मिल करो आनंद गुण गाव प्रभ परमानंद राम नाम दात कर विचार दुर्लभ देह का कर उदार अमृत वचन हर के गुण गाय उपरा अंतरन कह है स्वभाव आठ कह उपरा प्रीतम देरा मिटे अज्ञान विंस अंधेरा सनप दे हृदय साव मन छे नान हर पाव हर पल तु दे हो स्वा राम नाम अंतर और तार पूरे गोर पूरी दीखिया जह मन बहत साज प्रीखिया

देहते दूर कहाँ को जाय। उपरा रख नार दिया इंद्र पाओ जब सकल पा मिटाय। प्रभु कृपा दे प्राणी छुटा जह प्रभु राख दहना हिंदू नाम जब मन वध सुख चिंता जाय। मिटा अहंकार देह जन का कुएं न पहचन हार। श्री रूप ठाठा कर सूरा नानता के कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाय दृष्ट। दर्शन पीख दुदरता श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुरूप सफल दर्शन संद्रह रूप दान शिव शिव परवार अंतर जामे पुष्प कर दान जह मन बस आय सोहत ने हार। दुता के निकनावत काल अमर पय अमर पद पाया। स संग नान हर दियाया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु ठीठा नाम प्रभु का लगा मीठा। सगर समय ग्रीय कटमाय हन करम नाना दृष्टा ही

पुत्र सुबह अनंत कट कट व्यवृह भगवंत तरुण वाह आकाश पयार सर्वलोक पुन प्रतपाल बंतन पर्वत पार ब्रह्म जैसी अगत सकर्म पौन पाणी वैसंत्र वाह चार कुंट दह दिश संवाह दिह दिपे नह कोठा गुरु प्रसाद नन सुपा वेद प्राण समृत मदीत शशि अर सूर्ण क्षेत्र महीक बाणी प्रभु सब बोलया बडोल कभु डोले सर्व कला कर खेल खेल अमूल न पाया गुण है अमूल सर्व ज्योत मह जाकि ज्योत तारहु स्वामी ओत बोत गुरु प्रसाद परम कहना स्नान दिन में हु विश्वास संत जनक पीखन सब ब्रह्म संत जनक हृदय सब धर्म संत जना सुन सब वचन सर्व्या राम संग्रह जन जन जाता तस्वीर रहत सात वचन साधु सब कहत जो जो हुए सो सुख मान कर्म करावन हर प्रभ जान अंतर बस बाहर की ओही नानक दर्शन दीख सा मुहि अवसाद किया सब सात तेह प्रभ दे सगली उत्पाद देह पावत कर विस्तार देह पावत एक अंकार

आया। पूरे के गुण गावस्त पदि पूरे गुरकासन अवधि सपार ब्रह्म निकर बिकसा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरा चिंदा सनित त्याग सतरंग संग जन को दूर मर मांग आप छोड़ बेनती करह साध संग अगन सागर तरह हर तन की पर लिखु भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार किम कुशल सहज आनंद सा संग पद परमा

कर कृपा प्रभाव मिला मिट गए बैर पै सबरी नम्रत नाम साध संग्रह सुप्रसन्न पै प्रदीप पूर्ण वही शिव किसी वाल जंजाल विकार रहत राम नाम रसना कहती।

निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणांडे अंडट बाडे चाचरी छंद त्रै प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे कुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दानी चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परम न पितरे न कर्म न काय आजन्म आजाय न चित्रे न मित्रे परे है पवित्रे पृथ्वी सह आदि सह आदर सह आत्र सह भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आचिज दिसै के अभिज पिसै के आगंज कर्मै के अभंज भरमै के अपिज लोकै के आदित सुखै के अपूत वर्णै के विभूत करणै के राजन प्रवाहै के धर्मं तुजाहै के अशोक वर्णै के सर्वा अपर्णै के जगतं कृति है के छत्रं क्षत्रिय के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुपम रूपै के आदि देव है के आप अपेव है के चितं बहिने के एके अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक बेअब है के गैबल गैब है के फुल गुनाह के साहन साह के कारण गुण है के रोजी देहंद है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वंकलियाँ के सर्वंगली सर्वत्र मान के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजय के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र पुराण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंकली में के प्रमुख महिमे के आकल लाम के साध कला में के हुसल वजू है तमाम लरजू है में सुलसला में सलीक मुदा में गनी मुच कस्ते गरीब लपरस्ते बिलंद मकाने जमील जमाने तमीज तमाम रसूल निधाने हरीफ लजी मेरे जाय की किने ने कुल तरंग है अपेद है अपांग है अजी जुमले वाजे गनी मुल्क के राज है निर तो स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदियन रूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उमंग आद रूप में अनाद स्वरूप है अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपरगं त्रिपाद्य अगंजे अगाधे सुभंग सर्व भागे सु सर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचेज है अछूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रजगत अनूप है निरुक्त सुधा है विभुगत प्रभा है अनुपत स्वरूप है प्रजगत रूप है चाचरी छंद है भंग है नंग है भेख है लेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है तूत है नास उदास है तंद है बंध है भगत है विरक्त है

अनिल है सुनित है अजात है आजाद है। चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वगंता सर्वगंता सर्वज्ञाता सर्वज्ञाता सर्वकर्ता सर्वकर्ता सर्वपुराण सर्वकरण सर्वकर्म सर्वकर्म सर्वयुक्ता सर्वमुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद। नमो नर पिनासे सदैव प्रकाशे अनंगन स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाथे सदा सर्व साथे। अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूप सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक है अमितो अमिक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद। के जा हजूर के हाजर हजूर है मैं तुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है। के रोजी देहंद है के राज कुर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसन जमाल है के नीमुल के राज है गरीब निवाज है हरी पुर शिकन है रास रूप कन्न है। कलंकों प्रणास है समस्तु निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तु जुबान है के साहिब किरा है। के नरकुम प्रणास है भिष्टु निवास है के सर्वल गवन है मिसुल रवन है तमामल तमीज है समस्तु अजीज है। परम परम ईसा समस्त आदिश है आदेश अलेख है हमेश अपेख है जमील जमा है अमी कुली मा है करीम कमाल है के जुर्त जमाल है। के अचल प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो प्रसा है के आत्म प्रभा है। के अचल अनंग है के अमितो अपंग है मधुपार छंद प्रसाद। मन मन प्रणाम गुण गुण मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मन बल सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव नाश। मन मन प्रकाश गुण गुण प्रणाम दिल थन मुदाम आन छेद अंग आसन पंग उपमा पार गत में तो दार जल थल मंड दिस विश पंड दल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनाश तृत कर तुरा सजान बाह किस दाह ओंकाराज कथनी नाज खलखंड ख्याल गुर बर अकाल। कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिज गात अज जना बात अन झंज गात अन रंज बात अन ठट पंडार अन ठट अपार अडीठ कदम अतीठ कर्म। आन ब्रण अनंत दाता महंतर बोल मना छंद प्रसाद। करुणालय है अरकाल है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है तत्क करण है जग करण है मनमान्य है जग जग जान्य है। सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपास है सर्वनाश है करुणा करें विश्वंभर है सर्वेश्वर जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा करें जपा जप है अथापा थाप है। आकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा करते हैं कर्ता करते हैं धर्मी करते हैं तेश्वर है परमेश्वर है आकृता करते हैं अमृतामृत है अजबा करते हैं अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्पनायक है सर्वपायक है। भाव भंजन है अर्गुंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलन करते हैं सर्वा करते हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस हैं जिसके जैसे हैं पुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्री नमो राज राज नमो इंद्र इंद्री नमो अंधकारि नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राम सिंह शांत रूपे। नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युधे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पान नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे। नमो इंद्र इंद्रे अनादि भूते कलंकार रूपे लंकार लंके नमो आसास नमो बाघ बंके भंगी स्वरूपे नंगी नाम मित्र भंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अक्षरी छंद। अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास कास गंज पंज अलख पख काल दयाल लेख पेख नाम काम गाह ठाह नख परमाथे जो निमो न रागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे। उजंग प्रयात छंद नमस्तु प्रणाम स्मस्तु प्रणासे अगंजुल नाम स्मस्तु निवासे इंद्र कामं विपूते समस्तु स्वरूपे तु कर्म प्रणासी सुतर्मं विपूते। सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करीमुल कनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंग पाव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते।

जगत बनायो, देव दया तुच्छनु पुजायो, आदम ते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजाजने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को बल मुँह बध कियो, कट कट के अंतर की जान, भले बुरे की पीर पछान, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ कर्क करत हूँ कब हूँ तुम, मैं मृत देह तर सब हूँ, जेते बदन शिष सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रह नरालू, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निरभकार निर्लंब, आद अनिर अनादि असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ता को कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदाशिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद है जेती, वर्णित भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पुसारा, कह बिस जा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पिव राव पिपूपा। अंड जजे रज सेत जकीनी, उदबुज खान बहर रच दीनी, कहूं कूल राजा वह बैठा, कहूं सिमट प्यो शंकर कैठा, सिगरी सि दिखाए अचंग पवा, जुगा जस रूप अंग पव, अबरच्छा मेरी तुम करो, सिख अबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठो तत पाता, सकल मलेच करो रण काता, जे अस्तु जितव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै, मरे पुरख जमन पग परे, तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, रक्षा हो ताहे सब काला, दुष्ट अष्ट रह तत्काला, कृपा दस्तन जाय न हर हो, ताके तापनक में हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाछ वह सके न कोई। एक बार जिनको मैं संभारा, काल पास ते ताहे उबारा, जिनर नाम तिहारो कहा दार, दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के, तो मैं शरण तिहारी, आपा दे लह उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते लह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, क्लिबिक सकल जिह को हरता, दुष्ट दोख यन को छय करता, श्री अस्तु जपै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला, मन बांछत फल पावे, सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल। सुनै गुंग जो जाहे सुरस ना पावे, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै।

संबत्सरः सहस्रपणिजय अर्धसहस्रपंतीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीरस तत्द्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहीं जब ते तुमरे तब ते कू आंख तरह नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो।

पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख

शाम कह स्तम ब्रिस्वा मिसक में श्री सात है सबको सासुमा वेरिया प्रपुर राम नाम देवा मसू नायल प्रास जाए ना तुम त्रिपा जुज में जो श्री चंद्रा।

हील बसरे कपड़े पहरे रुक उठानी नील बसरे कपड़े पहर तर उठानी अमल की।

ख्वार हुए सब मिलहेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो शरदा कर सेव दे, खंडा जाके हाथ में, सो हमरी रचया करे, सो हमरी रचया करे।

0: का सिमरै से मुख सहावै, प्रभु का सिमरै तिन सुख बिहावै।
1: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता।
0: प्रभु का सिमरै तिन अनंत कनेरे, प्रभु का सिमरै बसाय हर नेरे।
1: संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै पाग।
0: प्रभु का सिमरन कार्य पूरे, प्रभु का सिमरन कबू न चूरे।
1: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी।
0: प्रभु का सिमरन निचल आसन, प्रभु का सिमरन कमल विगासन।
1: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार।
0: सिमरै से जन जिनको पव मया, नानक तिन जन सरनी पया।
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेदो पाए।
0: हर सिमरन पय सत जति दाते, हर सिमरन नीच चौंक उठ जाते।
1: हर सिमरन तहरी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना।
0: हर सिमरन कियो सगल अकारा।

0: रात हर हर औखद साधक मात
1: हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान
0: मंतन रंग रते रंग एक है नानक जन कै व्रत विवेक
1: हर का नाम जन को मुकत जुगत हर के नाम जन को त्रिपत पुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर का नाम जपत का परे न पंग
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न पंग हर का नाम जन की बटियाई हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग हर का नाम जपत कछ नहीं बियोग
1: हर नाम

जिन तू सास वार सिंगारिया गर्भन में जिने उभारिया बिरद पया ऊपर साख सैन मुख्य पया बैठ को दैन जे तरसा तार ऊपर सुख बसे सुत प्राग मीत मनता संघसे जे प्रसाद होगे सब रसा सगल समग्री संसार बसा ऐसे दो मूल आनंद व्यापे नानक काल नहीं उरा व्यापे

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिष्ठा कर को रख मन माए।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याए सदा मन।